0: ओभारे खाना प्रॉब्लम सही आता नहीं ना हो याचो मेवाने बच्चे जी तारे मुई पिवा मिमेमी मार्वलरी प्रिवा बीरा देसी सर मोबाइल गंगा आप गैलरी भी या वो मैं बाचो
1: मैं याम बीरा तैयार तड़ी बा तारे नासर बाजार लंबी मु मेरा ला कप ट्रॉफी प्रमाण पत्र बैनर को बनेल पर दी बीरा या वो मैं लो खारे तारे प्रिय आना से दी
0: सर गंगा आर गैलरी भी तो बने बाचो।